द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार कहा। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उसनूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नू देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन

भगवान कृष्ण कोल जावां ते अपनी गरीबी दूर करवा दें। मगर क्योंकि दोनों ही एक शिष्य दे रूप दे विच हन, गुरु एक है, शिक्षा एक गुरु पासों लई है, ते दोनों ही अपने अपने असूल ते कायम है।

मगर पाईसा पाई गुरदास जी जेड़ी रमज तक पहुंचे कहंदे ने दोनों ही अपने अपने असूल ते कायम। ते ए जानदे होए भगवान कृष्ण कि सुदामा अपनी जबान तो मंगेगा नहीं, ते भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यार कीता, परदखणा लई पैरी पै के गले लगाया और उदे चरण धो के उसनू अपने सिंघासन ते बिठाया। ते सिंघासन ते बिठाण तो बाद उसनू बड़ा प्यार कीता, इतना प्यार कीता। ते प्यार करन तो बाद भगवान कृष्ण कहन लगे, सुदामा बचपन तो हुण जवानी आ गई है, इतनी उम्रा हो गई है, बड़ा चिर होया है मिलिया नू, कोई गुरु की सेवा की कथा सुना। गुरु की सेवा की कथा की महानता दर्शा रहे हैं कि गुरु की सेवा की कथा करन नाल गुरु याद आउंदा है, गुरु याद आउन नाल गुरु का दसिया होया नाम याद आउंदा है, ते गुरु का नाम याद आउन नाल जदों नाम दसम द्वार दे विच टिक जांदा है, एकागर चित मन हो जांदा है। पाईसा पाई गुरदास जी फरमान करदे हन, कहंदे हन उस वक्त जितने भी पिछले माड़े कर्म हन वो सारे दे सारे कट्टे जांदे हन। पाईसा फरमान कर रहे हन गुरु दी सेवा दी कथा दी महानता। ते गुरबाणी विच भी स्वामी रामानंद जी महाराज दा एक शब्द है। ये स्वामी रामानंद

0: şarkıya ondan ilk hoş avukatat verdim.
1: Şavaş. Şere. Mal paran yandır.
2: Çok umdurlar.
0: Ay, cemre! El at kalk! Gel cemre!
3: मेरी बॉडी ता देख रही पागल हो जाएगी। मेरी सिंगिंग से कालेज पैसे की ओर दी मैं बोलूं।

झूठी हो सकती है? अरे थोड़ा झूठी हो सकती, अरे थोड़ा सुच्चा है, हर सुच्चा है।

साहब उपदेश करते ने प्यारे अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारिया निंदका पिठ दे नाम दे मुख लाए। नाम दे वर्गियां नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारिया नू पिठ दे दिती मुख नहीं लाया। जिन्ना नाम जपया सिमरन कीता भावें कोई वड्डा है भावें कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालिया नू नाम जपन वालिया नू सेवा करन वालिया नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजै शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उदी शरण विच आ जाए।

शिव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है। एक पल भी नहीं विछड़दा त्यारिया, पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड़ी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीं बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याछा।

गुरु नानक दी मोर लाके धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे

मन गुरु चरणा दे नाल जोड़ के वाहेगुरु शब्द दा उचारण करदा है उसनू एडा वड्डा फल प्राप्त है के जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए अठ अठ तीर्थां दे इशनान दा फल एथे ही बस नहीं जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जुग चार चढ़ो कैलाश रे हो कोई चार युग कैलाश पर्वत ते बह के तप कर लवे और इस दा महात्म एथे ही बस नहीं अगलियां तुकां विच

0: वह नंदले की देख तेरा नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों लगे?
0: खुंडकारा लकड़ी के उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जांदा।
1: पटरा क्यों लगे?
0: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोते ने। भगत नामदेव जी दात दे छीने सन ना कपड़े धोंदे धोंदे हो अपनी आत्मा नु हरि नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु मैनू तेरे नाम की उन्नी टेक जिन्नी के पटरे नु खुंडकारे दी।

अपने सह दे नाल अपने प्रभु दे नाल रथे गए भाव जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया वो सारियां नूं चंगे लगदे ने क्यों जो हर का प्यारा सुस

खुलियो रुखड़ा अमृत जांग का नाव जिस तरह कोई कणा दरखत होवे छां वाला फलां वाला आंदे जांदे राही ते ओदे थले बैठ के आनंद माणदे हन उड़दे होए पंछी भी उस दरखत ते आके बैठदे क्योंकि सुख मिलदा है ते जिहड़ा साहिब है प्रभु है ए भी एक रुख है पर केड़ा अमृत इस दरखत दा नाम है भाव जिस तरह फलां वाले दरखत ते पंछी आके बैठते ने सुख मानते ने इसे तरह जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ओ प्रभु दा नाम जप के अमृत रूपी नाम जप के अपना

हाँ ते बलहारी ना। पहली गल साहिब एक सफल रुख है पर इदा नाम है अमृत जिन पिया ते त्रिपत पाए ए नाम रूपी अमृत जिन्हें पीता ओ त्रिपत हो गया क्योंकि नाम विच सारे सुख हैं दुनिया दे पदार्थां विच सुख नहीं एक चीज ले लो दूसरी दी इच्छा पैदा हो जाती आज इतनी माया है गुजारा हो रहा है पर इच्छा है इस तो ज्यादा चाहिए एक चीज कार विच है पर मन दी इच्छा होर वध गई होर चीज चाहिए दुनिया दे पदार्थां दे नाल इंसान कदी रजदा नहीं पर साहब जी कह रहे ने जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पी लिया नाम जप लिया उन्हां दे मन दी तृष्णा खत्म हो जाती है ते जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पीता साहब जी कहंदे ने हौं तिन बलिहारे जाऊं मैं उन्हां तों

खौवारी बन जा, खनिए बन जा, तो साहिब के नामे ऐ परमेश्वर मैं तेरे दुबारी तेरे नाम तो कुर्बान जाना। तन गुरु नानक साहब जी बयान करते हैं, आओ अपनिया बिरतियां उस पास ले चली। गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते हैं। बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे भैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नू मिले, नाल बेबे नानकी दे पति

बड़ा चिर हो गया नानक नु देखे है, तू आई है, कुछ भरोसा होया मन नु कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे पाईया जय राव अपने सौरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके, मेहता जी ने प्यार दिता ते पाईया जय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए, असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज दे दर्शन होणगे। पाईया जय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे पाईया लगदे ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने, पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो, मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने, ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी, बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारां पहला उड़न लग पैंदियां। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। पाईया जय राम गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए, एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए, अमली अमल ना अंबड़े मच्छी नीर ना होए, जो रते सह आपने तिन भावे सब होए। है पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा, अमल तो बगैर जी नहीं सकदा, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी, असी भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं, तेरे बगैर असी भी जी नहीं सकते।

क्यों के मापे जेड़े ने एना दी सेवा रब दी सेवा एक बराबर है। मापे औलाद नु जन्म देंदे ने, मापे दाता ने, और दाता कदी भी किसे नु दुख नहीं देंदा। माता तृप्ता जी कहन लगे थीए, मेरा पुत्र नानक मेरे कोल नहीं, मैनु किवें चैन आवे। फेर पुत्रां दा कोल ना होना ते मावां दे मना दी तड़प कैसी। भाई वीर सिंह जी ने माता तृप्ता जी दे मन दी अवस्था इस तरह बयान कीती है, दुनिया आन अनेर पुत जी अखों ओले, तौलर मिट्टी ढेर महल हन सुंजे खोले, बल दे दिसन बाग विच जे पुत ना होवे, कादे मिठे राग माओ जे हंजू चोवे, तुर गए पुत बदेश माओ नु सार ना करली, जूंदी मोई माओ हिके ओ होवे चली, मां जीवे तद लाग पुत विच वेड़े दिसे, दित्ती पुत्र कंड माओ ज्यो छाला कसे, मर जावे ओ माओ पुत ना वरिया देखे, तड़फे मच्छी वांग पुत दे मिलन भुलेखे, मैना सीगी जोग पुत सी नूर इलाही, नैना ताई वियोग नूरदा रहे सदाही। वीर प्यारी भैन अज है वेड़े आई, कि अपने है नाल सुख दा सुनेहा लियाई। माता तृप्ता जी कहन लगे, हे धीए उना महलां नू की करना जिन्हां विच पुत्र ना होवे, ओ सोहणे बाग वी सड़दे नजर आंदे ने जिन्हां विच पुत्र ना होवे, पुत विदेश चला जावे मां नू खबर ना करले मां जी नहीं सकदी। एहो जिहियां वैराग दियां गल्लां करदे आ माता तृप्ता जी मंजी ते लम्मे पए, हत्थां दे विच ओ चोला सी के जिहड़ा उड़ीकदे ने कि अपने नानक पुत्र दे गल पावांगे, ओ चोला हत्थां विच फड़े चोले ते हथ फेरदे आ, अखां बंद ने, आप ही कहिंदे ने कई वारी, मां मैं आ गया लिया मैनू चोला पुआ, आप ही कहन लग पैंदे ने बेटा नानक ऐ देख मैं तेरे वास्ते हर साल दी तरह इस वारी भी चोला सी के रखे है कि चोला तू पावेगा। माता तृप्ता दा वैराग चलिया नहीं जांदा। उधर ननकाणा साहब दा राजा राय बुलार ओ भी गुरु नानक दी याद विच अथरू पिया केरदे, गुरु नानक दे प्यारे इकट्ठे बैठे कीर्तन पै करदे ने गुरु नानक दी याद विच, ते नाले अरदासां पै करदे ने।

अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद में मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पे देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे राय पोई दी तलवंडी दा राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदे होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखल होए और आंदे हैं धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार इस सत करतार अंदर जिमें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब। माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पाला है आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रख दी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें मैं फिर मिलांगी।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो, बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे भज के आए चरणा ते मथा टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लईआं, कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मथा टेकन ए नहीं हो सकदा। सात संगत, ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ता कि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे। जे साढ़े हिरदे विच प्यार होवेगा साढ़े घर विच भी प्यार होवेगा। जिदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके है, चंगा पिता ना बन सके है, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके है, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके है, साध संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसी गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना। ये कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषों के जीवन वाल देखने वो पति भी ने पुत्र भी ने वो भरा भी ने वो सज्जन मित्र भी ने वो गुरु भी ने वो पीर भी ने उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के अस भी अपने मना विच प्यार रखी साढ़े मन विच प्यार होगा अपने घरदियां नू प्यार देंगे लोगों नू प्यार देंगे ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड़े हो तुसी मेरे पैरा ते मत्था टेको ते नहीं हो सकता साथ संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है इना गल्ला नू कोई मन्ने पावे ना मन्ने पर सुख ता मनण विच ही है हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नू किया मरदाने आ हुण तुसी जाके भाई अजय राम जी नू लैके आओ शहर वासियां नू पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाण का सुभाग प्राप्त हो रहा है पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा कित्थे चले साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नू वैराग विच उठा नहीं सके धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ये प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ही जानता है जिसने ये प्यार किया है भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पर आई जाके अंतर दर्द ना पाई भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती है भगत रविदास वो भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहते ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले के ए प्रेमा भगती दे तीर जेड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने ओ ही जाने

पहुंचे। ओना दे सिर दे हाथ रखे है, अखां खोलियां, तन गुरु नानक साहब दे दर्शन कीते, मन तृप्त हो गया, सारे प्यारे कट्ठे हो गए। तन गुरु नानक साहब घर वापस आए। राय भोज दी तलवंडी दा राजा राय बुलार भी दर्शना वास्ते आया, मत्था टेकया, सबन बथेरा किया, राय जी तुसी बजुर्ग हो। पर राय बुलार कहन लगे, मैं भावे मुसलमान हां, पर जद मैं तुहानू देखदा मैनू तुहाडे मत्थे तों अल्लाह दा नूर नजर आंदा। तुहानू देखदा, तुहाडे मस्तक नूं देखदा, तुहाडे मस्तक तों अल्लाह दा नूर मैनू नजर आंदा। साध संगत महापुरुष किसे एक दे नहीं, वो सब दे सांझी हुंदे हन, ते जिहड़े सारे नाल प्यार करदे ने असल विच धर्मी भी उही ने। जिहड़ा अपने धर्म नूं चंगा दूसरे नूं माड़ा कहे वो धर्मी नहीं हो सकदा, क्योंकि जिहड़ा धर्मी है वो ते सब नाल प्यार करदा है। इस तरह इन्हां सारे प्यारियां ने मिल के धन गुरु नानक साहब का जन्मदिन मनाया, गुरु कियां खुशियां प्राप्त कीतियां। आओ भाई इस कथा तो आपां भी इह सिख्या लईए, एक ते साहिब वास्ते अपने मन विच प्यार रखे, दूसरा जीवन इहो जिहा होवे कि साडे जीवन तो लोग सिख्या लैण, सब नाल प्यार करिए, और ऐसा प्यार कि साडा इह प्यार दूसरियां दे हिरदे विच भी प्यार भरे और नफरत नूं दूर कर देवे। इह तां ही होवेगा जे असीं बाणी दीआं इन्हां पंगतियां नूं अपने हिरदे विच वसावांगे। आओ अरदास करिए, ऐ धन गुरु नानक पातशाह सानू नहीं पता वारी किस तरह जाई दे, सानू नहीं पता नाम तो किस तरह कुर्बान होई दे, पर तेरा ही शब्द पढ़ के अपने मन की भावना पर प्रगट करने हैं कि असी भी तेरे तो वारी जाने हैं, तेरे तो कुर्बान जाने हैं, तेरे नाम तो कुर्बान जाने हैं, क्योंकि तेरे नाम दे विच सारे सुख हैं।

जे हुक्म होया एक रहबर नू एक पैगंबर नू अंगयारियां ते चलन दा सामने अंगारे वेखे घबरा उठिया पुकार कीती अपने खुदा दे चरणा विच हे परमात्मा ए अंगारे इन्हां ते मैं चलांगा ते मैं सड़ जावांगा ए फुल बन जान। प्रभु दा भगत सी अंदर जेड़ी ए लालसा उत्पन्न होई परमेश्वर ने ओ दी भावना पूरी कीती कौतक वरत्या ओ अंगारे फुल बन गए। ऐथे ही बस नहीं खंबा तपा के लाल कीता है अग नाल हुक्म होया हरनाकश दा प्रहलाद नू इस खंबे नू गलवकड़ी पा मैं वेखदा तेरा परमात्मा तेरा परमेश्वर तेरा राम तैनू किवें बचाण वास्ते आउंदा है। जदों प्रहलाद अगे वधिया खंबे नू गलवकड़ी पाण वास्ते उस खंबे दे विच्चों सेक आया क्योंकि अग नाल तपा

चारे पासे एक खबर फैल गई। चंदू जिसनू समय दी हकूमत दे बादशाह ने गुरु अर्जन देव पातशाह नू तसीहे दे दे के शहीद करन दा इशारा मिल चुकया सी। ओ चंदू अपने वालों उसने कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। प्रभु परमात्मा दा खौफ भुल गया, अपना आप भुल गया, सिर्फ एक तशद्दद करना ही उसके सामने है। कई तो यह भी कहते ने कि उसने बदला लिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के साहबजादे गुरु हरगोबिंद साहब जी नू जदों चंदू दे भेजे हुए दूतां ने रिश्ता कर दिता और आके दसिया कि गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सहजादे साहिबजादे हरगोबिंद साहिब पातशाह उन्हां नू रिश्ता दे आए हां, तां हंकार विच हौमे विच मतिया होया ए चंदू, क्योंकि सरकारे दरबारे ये नौकरी करदा सी, इनू बड़ा चंगा दीवान दा रुतबा हासिल सी। हंकार विच बोलिया, तुसी चुबारे दी इट मोरी नू ला आए हो, भाओ अपने आप नू उसने बहुत वड्डा दसिया।

संभाले समरहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी तहा सौ करता चिंता करे जिन उपाय जग तिस जुहारी स्वस्थ स

नाम भक्ति जे रपे कूड़े सोना कोई महला पहला लम पाप दो राजा मैता कूड़ हुआ सरदार कामनेर सद पुछिए बहवे करे विचार अंधी रहित ज्ञान होनी पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वाए रूप करे सिधार उचे कुके वा

मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवका वांग उस दी भगती करदा रहो। अते हे दास नानक आख

इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण गाय ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत